0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 6475041557
6: बिल्कुल कोई भी नंबर चाहिदे है कोई भी एडवर्टाइजमेंट करोनी है कोई भी जानकारी लेनी है साडा हेड ऑफिस है 6475041557 6475041557 647-1557 ਸਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸੋ ਸਰਾਂਸ਼ ਵੈਲਕਮ ਕੀ ਹਾਲ
7: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ
6: ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ
7: ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇਹ ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹ ਚ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪੈਸਾ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਹੁਣੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਓ 437-264-3175
6: ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ 437-264-3175 ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ
7: PR citizen protected person ਦਾ status ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ income ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ
6: ਜੀ
7: ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਤੀ ਉਸ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਕੀ ਫੀਸ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਲੋਨ ਆਤਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਤੋ ਉਨਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਆਪ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਿਡਸ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜੋ 30,000 ਕੀ ਹੋਤੀ
6: ਓਕੇ ਸਰ ਸਟੂਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੋ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ
7: ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ
6: ਸੋ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਓਕੇ
7: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
6: ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ
7: ਇੱਥੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਬੈਂਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਤੋ ਆਪਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਆਪਕੇ ਇਨਕਮ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਹੈ ये बैंक नहीं है जो आपकी कारीगरी चलेगी सेटिंग अप्रोच चलेगी ना सारा ट्रांसपेरेंट चीज है ऑनेस्टी से भी हम काम करें 7 years से नोटिस असेसमेंट मैरिज सर्टिफिकेट बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट लगते हैं और जितनी इनकम कट है कि जितनी कम है कि 2024 दे नोटिस असेसमेंट विच उन्नी ज्यादा फंड बनती है जी साढ़े को आज भी लाइक पांच से छह क्लाइंट्स आए थे जिनके लाइक 2 से 3 किड्स हैं और 12 साल से नीचे हैं तो उन सबकी फंडिंग अराउंड 70,000 से 90,000 के बीच में बनी है
6: वेरी गुड
7: और लाइक उनके डायरेक्ट उनके खाते में जाती कोई कैच है ही नहीं इसमें
6: एंड ये जो पैसे सरांश ने ठीक है एजुकेशन लिए मिलते हैं बट जेडे कोर्सेज ने किन्ने सौखे ने एंड की ऑनलाइन ने सारे कोर्सेज
7: साडा लाइक जो मेन ऑडियंस है जो मेन साडे क्लाइंट्स है वो मिडिल एज दे है तो उसके इसलिए उनको चाहिए वो अपने घर की जिम्मेदारी में पहले से बिजी हैं तो उनके लिए फुली ऑनलाइन कोर्स वो लाइक करते हैं जो 2 से 3 घंटे क्लासेस एवरीडे लगाते हैं मंडे टू फ्राइडे, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, सोखे जे कोर्सेज ने मैनेजमेंट दे। एंड अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स करना है HVAC, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, वो भी साढ़े को लेके, बट उस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम पहले बताते हैं ये चीज, आप हमारे ऑफिस आए, एज लिमिट कुछ है नहीं, 30, 40, 50, 60। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सैलून ओनर, और लाइक अनएम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, आपको अच्छा बेनिफिट है जी।
6: वेरी गुड, सो बेनिफिट बहुत ज्यादा है। नंबर है सराज का 4372643175। एंड सराज, एंड ते थोड़ी की फीस है, तुसी कदों फीस लेने हो?
7: हाँ जी, वंड के चखो, असी लाइक ट्राई करते हैं कि हम ये चीज अपने एक्टिविटीज में लेके आए, इसलिए हमारी फीस काम होने के बाद 199 से 499 डॉलर है। आपके पैसे बन रहे, ज्यादा मोटे बन रहे हैं जी, हमें कोई लालच नहीं है, हम सेटिस्फाइड है अपने, मेरा कोई शौक नहीं बड़ी गाड़ी में घूमना, बड़ा घर चाहिए, कोई शौक नहीं मैं ऐसे, सिंपल सी लाइफ है और पैसा साथ लेके नहीं जाना। काम होने के बाद अपने पैसे देने हैं और शुरू में कुछ नहीं देना। आप हमारे ऑफिस आए, हमसे फोन में बात करें, कोई परसेंटेज, कोई कमीशन, कोई कैच नहीं है, जैसे गवर्नमेंट इतनी चीजों में पैसा लगाती है। अभी मैं रेडियो पे सुन रहा था, अगर आप रिफ्यूजी है, आप ऑर्थो पता नहीं वो सोल बनवा लो अपनी जो होती है, मतलब डेंटिस्ट, सब कुछ फ्री रिफ्यूजीज के लिए, राइट? मतलब तो वैसे ही गवर्नमेंट एजुकेशन इन्वेस्ट करते, कोई कैच नहीं है। कॉल करें 437-264-3175, 437-264-3175। तुसी सानू हुणे भी कॉल कर सकते हो 437-264-3175।
6: वेरी गुड, सरांश नु फोन करो भी, पैसे लो एंड बुले लुटो। नंबर है 437-264-3175। सरांश बहुत शुक्रिया सर।
7: थैंक यू।
6: सो प्रोग्राम पंजाबी दा ते देखिया, नाले पैसे, नाले ग्रांट ते वधिया मौजां करो, मौजां वो मौजां भुलणियां नहीं जो गवर्नमेंट दे सर ते करियां है। सो ओके, एक दो चीजां तुहानू दसणियां बाकी ने। एक ना, तुसी किचन नवी तैयार करनी है, टॉप ऑफ द लाइन, हाई एंड कमाल दी, रीजनेबल रेट, बिल्कुल फ्री एस्टिमेट, खास डिस्काउंट मेरे नाम नाल, ते नाल दी नाल एक डबल अंडरमाउंट सिंक बिल्कुल फ्री। तुसी न्यू हाइट्स किचन दे साडे जसपाल राय बाई जी नू फोन करो। जसपाल राय बाई जी, नंबर है 416-859-1920, 416-859-1920। जसपाल राय भाजी ते किचन बहुत टॉप दी कमाल दी रेडी करदे आ, 416-859-1920। 2162, हेलो जी, सस्का जी।
8: हां जी, बिल्कुल।
6: जे तुसी फॉरन एक्सचेंज दा काम करदे हो ना, सानू कॉल करो, थोड़ी वधिया बिजनेस दी मशहूरी असीं करांगे। मैनू रोज ही तकरीबन फोन आ जांदा कि भाजी इंडिया पैसे भेजने, किहदे कोलों भेजिए। सो जे किसी ने भी एक ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 647-504-1557 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ?

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 9054595533 PNJ Spring Wheel Alignment।

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
1: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: मैं कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी।

0: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
1: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-500-416-817-6500।
2: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ PUNJABILEHRAN। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: ओके तो अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी।

0: Visa Medical Insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Trace Insurance Agency.
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कनेडियन

0: या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

काश काश काश मेरी भी हर सुबह इतनी ही खास हो, काश मेरी भी हर सुबह इतनी ही खास हो। मैं खोलूं आंखें अपनी और तुम मेरी जान बस मेरे पास हो।

0: मैं किरण जी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में,
1: जी
0: तो ये है कि आप हमें मुझे कांटेक्ट करें, आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। इसके अलावा आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर है उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए बिजनेस लोन चाहिए, आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और किरण जी आप ही नंबर बता दें, एंड वंस अगेन नेक्स्ट वीक में वी गोना कवर बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल, आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, कितनी अमाउंट के लिए क्वालिफाई करते हो, और जिन लोगों ने एक साल के अंदर अंदर बिजनेस खोला है उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, अगर एक साल से पहले पहले आप कॉल कर लें इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ CSBFL, एक साल के बाद लेना मुश्किल हो जाती है, मतलब उसके अलग फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है। थैंक यू सो मच, बैक टू यू।
1: बिल्कुल जी, बड़ा आसान जी इन्हों का नंबर है, मेनू तो खुद मुंह जवानी इन्हों का नंबर जी चेते हो गया है, 647-512-7000 जी इन्हों गलबात करो और देखियो बड़ा तजुर्बेदार जी इन्हों का एक्सपीरियंस है, तुम बिल्कुल सही सलाह देंगे। मुकेश चौहान फ्रॉम मोरगेज डिलीजेंट। सो बिल्कुल जी सुखी जी एक बार फिर
2: करण जी एक बार दस दिए कि कई बार ड्राइव करते होंगे कई साडे लिसनर, पर उन्होंने को पेन पेपर नहीं होंगे उस टाइम लिखण नूं, वो कदी भी वतनों दूर दे ऑफिस कर लैन फोन, सानू बड़ा इजी साडा नंबर है वो सेव करके रख लैन, स्टूडियो दा नंबर 9057990999 हुंदा है, और जिहदे विच तुसी असी सानू अपने स्पोंसर दा नंबर दे सकते हैं। उस तो पहला भी मैं किरण जी आपां दस के गए सी कि साडे कोल कुछ गैस स्टेशन आए ने, जिहड़े गैस स्टेशन किचनर दे विच है और हैमिल्टन दे विच पिकरिंग च वाटरलू अते इस दे नाल नाल वुडस्टॉक दे विच ते बैरी दे विच, और ए गैस स्टेशन विच कई गैस स्टेशन विच कॉफी शॉप है, कई दे विच रेस्टोरेंट है, कई दे विच कार वाश है, सारे अलग अलग ने, अलग अलग इनकम उन्हां दी आ, कैप रेट आलमोस्ट 9-10% बनता है। सो कॉल कर लो इनफॉर्मेशन वास्ते, कुछ कॉल आईया भी ने, उन्हां दे सारयां दे जवाब साडी टीम जरूर देवेगी रेडियो तो बाद। नंबर है 416-881-7070, 416-881-7070 ते तुसी कॉल कर लेनी। आपां रोजाना एक गल कहने हुन्ने आ कि आ जिहड़ा समां है ये बायर दी मार्केट है, जिहड़ा इन्हां दिनां दे विच कोई चीज़ होल्ड कर गया जां खरीद गया और आउण वाले दिनां दे विच फिर उहदी चांदी ही चांदी पैसे ही कमावेगा, क्योंकि इस टाइम काफी लो प्राइस से जिहड़ा हैगा प्रॉपर्टी तुहानूं मिल रही ने। साडे कोल काफी प्रॉपर्टियां ने जिन्हां दे विचों घर लेना चाहुंदे हो, कोई कांडो लेनी चाहुंदे हो जां कोई बिजनेस लेना चाहुंदे हो, ते नंबर 416-881-7070 ते तुसी गल कर सकदे हो साडी टीम नूं, ते तुहाडा काफी जिहड़ा हैगा उह फायदा असीं करवा सकदे हां जी। आलमोस्ट 1:55 होण लगे आ और तुहाडियां कॉल्स आईयां, मैसेज आए, बहुत बहुत धन्नवाद आ। हाँ, जे कोई व्यापारी वीर भी साडा सुणदा होवे, जिहदा कोई बिजनेस है, वह चाहुंदा होवे अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना, उहदे विच होर इनकम लियाउणी, ते साडी टीम दी हैल्प लै सकदा है, असीं उहनां नूं रेडियो ते टेलीविजन ते सोशल मीडिया ते और नाल दी नाल साडी जिहड़ी इन हाउस टीम डिजाइन करदी है सारे पोस्टर वगैरह, उहनां दी हैल्प दे नाल उहनां दा बिजनेस लखां लोकां तक पहुंचा सकदे आ। सो कॉल कर लियो जदों मर्जी वतनों दूर दे ऑफिस 9057990999।
1: बिल्कुल जी, और नाल दी नाल जिहड़ा जी कल मैं तुहानूं कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दे कुछ जिहड़ियां जी सस्तियां हवाई टिकटां दे फेयर्स दस्से सीगे, उहदे विच जिहड़ा है जी टोरोंटो दिल्ली जे तुसीं वन वे जाणा चाहुंदे सिर्फ और सिर्फ $825 दे विच, या टोरोंटो अमृतसर 985, ते इह जिहड़ा तुसीं आउण जाण रिटर्न फेयर डील लैणी हैगी आ टोरोंटो अमृतसर $1830 मई च जाके सितंबर दे विच वापसी है जी, टोरोंटो तो जाके दिल्ली डेस्टिनेशन जिहड़ी हैगी आ मई च जाके जून च वापसी $1685 दे विच तुहानूं मिल सकदी है। इही तुसीं पाकिस्तान जाना चाहुंदे आ ते तुसीं उहदे लई वी डील्स लै सकदे आ, ऑल इनकलूसिव वेकेशन पैकेजेस जिहड़ा जी डोमिनियन रिपब्लिक सिर्फ और सिर्फ $1290 दे विच तुसीं जा के उत्थे अपना वेकेशन इंजॉय कर सकदे, मैक्सिको सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा है जी $1130 दे विच तुसीं जा के इंजॉय कर सकदे आ। सो इहदे होर जानकारी लै सकदे आ तुसीं कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल तों 9056781200, और इह तुहाडे लई जिहड़ा जी सवेरे 8:30 तों लैके रात दे 11 बजे तक अवेलेबल हैगे आ। और नाल दी नाल अंजम कुरेशी जी का मैसेज सांझे करदे हुए मैं दस दवां कि एक्सीडेंटल क्लेम बेनीफिट दे विच तुसी साथ लेना तुसी सलाह लेना चाहुंदे आ, तुहाडा एक्सीडेंट होया हैगा आ उहदे विच तुहानूं हुण समझ नहीं आ रही कि क्लेम किदां प्रोसेस करिए या किदां जिहड़ी जी सलाह लेनी आ, सो अंजम कुरेशी जी दे नाल सारी गलबात कीती जा सकदी आ 416-570-0157 ते, और साडे नाल गलबात ऑलवेज एक ही नंबर 9057990999 रेडियो तो बाद भी तुसी सानू जिहड़ा है जी एनी टाइम कॉल कर सकदे आ। सो सुखी जी चलिए
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-8817070। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ 9057990999।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5:30 ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ले चांदी दे कड़े, चांदी दी चेन, चांदी दे ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: घोर एंड अवनीजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले।
3: टिकटा दो लेनियां होन या चार, बिजनेस ले जाना हो या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, कॉल 9056781200।
4: आप पंजाबी आ गए।

0: है, मैरिट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के, क्यों? फंडिंग अगर फैमिली साइज ज्यादा है, किड ज्यादा है, फंडिंग ज्यादा आती है किसके अकाउंट में? मेरे नहीं, आपके अकाउंट में। डॉक्यूमेंट्स भी क्या लग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिट सर्टिफिकेट, इसमें क्या आप कारीगरी करोगे? और बड़ी सी बात, फीस कब देनी आपने? मेरे काम होने, हमारी फीस आपने अपनी ईमानदारी से काम होने के बाद देनी है। अगर इस लास्ट वीक 30 लोगों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है तो मुझे 25 के पैसे आ गए, 5 बंदे फोन नहीं उठा रहे, तो मेरा नुकसान जरूर हो जाता है इस काम में। लेकिन हम, हमारी शांति रहती है, संतुष्टि रहती है।
1: अच्छा, जिथे मर्जी बंदा बैठा ओंटारियो दे विच, ओह सारे लिए ओह अप्लाई कर सकदा किते भी बैठा होवे ओंटारियो च?
0: हाँ जी, ओंटारियो में कई बैरी है, हैमिल्टन है, हमारे क्लाइंट्स है जो आपका शो सुन के हैमिल्टन से आते हैं, हैमिल्टन से, बैरी से आते हैं। क्योंकि क्यों, रीजन क्या है? फुली ऑनलाइन कोर्सेज वो चूज कर देने।
1: ये बंदा हुन, ये बंदा विंडसर बैठा, उनू ये तो नहीं भी बार बार तुहाडे ऑफिस गेड़ा लाउणा पऊगा जां आउणा पऊगा, उत्थे बैठे बैठे
0: फुली ऑनलाइन कोर्सेज ने, ए टू जेड साल दा कोर्स है। एक बार भी तुसी लाइक सारा 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे अटेंडेंस तुहाडी लगनी चाहिदी है, एंड असाइनमेंट है कि एग्जामिनेशन नहीं है, कि कोई डाउट है तो हमारे ऑफिस आप आ भी सकते हैं। वापस आते हैं लोग, कहते हैं सर मैं लॉग इन करना सिखा दो, हम लॉग इन करने सीख जाते हैं, राइट। एज लिमिट कोई है नहीं, 40, 50, 60 ईयर्स के हमारे पास अंकल भी आते हैं, कहते जी बेटा ये लॉग इन करना सिखा दो हमें, ना कैसे लॉग इन करना है, आके सीख के जाते हैं, फिर पूरे टाइम क्लास लगाते हैं।
1: अच्छा, नंबर नंबर दो, साझा करो नंबर।
0: हाँ जी, नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75, नंबर अगेन 437-264-31-75, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी, 2 मिनट एक्सपोर्ट बुलेवार्ड पे हमारा ऑफिस, हमारा ऑफिस भी आ सकते हैं, हमारा ऑफिस 6 दिन खुला होता है।